0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

0: Glasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses, to visit कीजिए Alpha Optical, Chinkozi and Williams Parkway में मौजूद Golden Gate Plaza में, Brampton में. Alpha Optical, any age, any stage, जी हाँ, उनकी specials देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए. आंखों को चेक करवाने के लिए appointment के लिए 905-455-3333 पर कॉल कीजिए 9054560733. Alpha Optical, your vision is your business.
1: ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ.

आपको मिलेंगी वहाँ पे, कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है ऊबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।

मूड़ कछ भी न जान महादेव को कहते सदा शिव निरंकार काजी नित्य मैं देव आप अपनी बुद रहते थे परणत दिन दिन कोई कीती तुम्हारा न खाना जाए तो सारा यह कभी सदा

कि नवरात्रि के नौ दिनों में दुर्गा माता अपने नौ रूप लेकर घर में आगमन करती हैं, तो ऐसे नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः।

कुले भूयाते मंगलानुशासनम तुलाष्टकमिदं पुण्यम नित्यं यः सुकृति पठेत तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम्।

ब्रह्मनारद संवादे शनि वज्र पंडर कवचौ संपूर्णं संकाशं काश्यपेयं महाकृतिं तमो पापगणं नर्तोऽस्मि दिवाकरम् ॐ दधीशं च तुषाराभं चिरोदारणं संभवम्।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन हो है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीकेंड है।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब पहले तो पितृ पक्ष शुरू होने होगा। अब गणेश उत्सव जो है उससे सारे महाउत्सव जो है हर साल, तो गणेश उत्सव हमने मना लिया, अब आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो अब आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातचीत आपके साथ करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में इस फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर नया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई ऐसी आउटडोर फर्नीचर आपको चाहिए, तो वो सारा सामान ही आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, तो सारा सामान आपको, ये जो सारा सामान है ये आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, और फिर ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने मूविंग करनी है तो मूविंग करने के लिए आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपके लिए बहुत ही उनकी सर्विस बढ़िया है, कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए, 416-524-4164-6524-6704। तो जो लंदन आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी वाली खबर है कि लंदन में अब आपके लिए खुल चुके हैं, जी हाँ आपके लिए खुल चुके हैं मास्टर कोलिजन डिपो। तो आपका किसी तरह का भी कोलिजन का काम आपने करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो पे आप जाइएगा, गोर रोड पे मौजूद है। तो आपको बहुत बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो जी है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको जैसे मैंने कहा कि कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने, बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1135-416-213-1165।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है टोरंटो आसपास के इलाके में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हो। आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू, तो थैंक्सगिविंग आने वाला है अभी, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग।

0: दुनिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल
1: इन लहरों

0: सजनी ले चलो नदिया के पास।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर गाना पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह हम आपका खूब अच्छा मनोरंजन करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। हैमिल्टन वासियों, की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो ता अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लै के 1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, जस्ट 5.2% तों शुरू। अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ। साडी टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर्स दी लोड है तो ओ भी मिलणगे। चार टायर दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो, AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर। जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ए दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, $500 दी सिद्धी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840। 365-384-3840 बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो। ये तुहाडे वास्ते बड़ा वधिया मकाम है। तो आओ तुहानू एक होर बड़ा वधिया गीत सुनांदे आ इसे दे नाल। Let's go to this beautiful song.

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आप के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है और टीवी बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, किचन की गैजेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपको मूव करना है तो एचके मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपको मदद करते हैं कनाडा भर में मूव करने में। तो एचके मूवर्स का नंबर आप लिख लीजिए, 416-524-7046-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਦੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ

लंदन में आपके लिए अब मास्टर कॉलेजियल डिपो खुल चुके हैं, तो वहां पे आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे। गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, तो मास्टर कॉलेजियल डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको अपने कलीजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलीजन दीपू लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। masterkalijandeepu.com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हो। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे

मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो पूरा वीक है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आजकल बच्चे स्कूल वापस चले गए हैं, तो जहाँ पे भी बस उनकी रुकती है बच्चों को उतारने के लिए, जहाँ उनको पिक करने के लिए, तो आप जरूर स्टॉप करिएगा उसके लिए, बच्चों की आपकी सुरक्षा के लिए भी, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी। और अभी वीकेंड है, मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, 18, 19 और 20 सितंबर के लिए 3 दिन का है। तो जहाँ पे जो स्टैनले रोड पे कन्वेंशन सेंटर है, तो स्कोशिया कन्वेंशन सेंटर, वहीं पे ये म्यूजिक फेस्टिवल नियाग्रा फॉल में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कल रात को, मैंने देखा। और आज शाम को भी बहुत सारे लोग नियाग्रा फॉल में आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप भी जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों मित्रों को भी एंजॉय करवाइएगा। तो मैं आपको भूले बिसरे कोशिश करती हूँ कि जो गाने इतने ज्यादा प्ले नहीं किए जाते हैं, भूले बिसरे से हो गए हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको ऐसे ही गीत सुनाऊं ताकि आपको थोड़ा मजा आए और मुझे भी सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए, ठीक है ना? तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत भला, हैव ए वंडरफुल वीक एंड ए सेफ वन। और आप जरूर अपना किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, रन कीजिए। और कल 20 सितंबर को आपके लिए जो है टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल उसमें जाती हूँ, 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो राम मंदिर वाले गणेश विसर्जन बोट क्रूज भी है उनका, तो मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं जो हर साल करती हूँ टेरी फॉक्स रन के लिए जाती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी 5 किलोमीटर। सो ऑल द बेस्ट। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत भला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

0: इसके संग है तुम बताओ आंखों बात है मुझे बचाओ सुखी बस है मोरू परिवार किसी के
1: I'm not going to be able to do that.

आपको मिलेंगी वहाँ पे, कहाँ पे, योगी ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।

0: मोहुड़ कछु देखे न जान, महादेव को कहते सदाशिव निरंकार काजी नित्य मैं देव, आप अपने कुल रहते थे परिणत भिन्न तिन्न कोई देखी, तुमरा न खाना जाए पसारा, कहते कि सदा है हम संसारा, एक है रूप अनूप शंकुपा, रंग भयो राम रहे भूपा,
1: इन नाम के

सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकट मैंगो लीव्स केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 41 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।

ब्रह्मनारद संवादे शनिवज्रपञ्चरकवचौ सम्पूर्णौ संख्याशं कश्यपेयं महान्।

कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जानपि तदि धर्मेण दत्तं मह्यं च कृपया पुष्करे पुरा त्रिपुरारिश्चय कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा ममोच ब्रह्माय कृत्वा मधुकैटभयोर्भया।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन हो है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीकेंड है।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब पहले तो पितृपक्ष शुरू होने होगा। अब गणेश उत्सव जो है उससे सारे महाउत्सव जो है हर साल, तो गणेश उत्सव हमने मना लिया, अब आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो अब आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातचीत आपके साथ करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में इस फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर नया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई ऐसी आउटडोर फर्नीचर आपको चाहिए, तो वो सारा सामान ही आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, तो सारा सामान आपको, ये जो सारा सामान है ये आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, और फिर ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने मूविंग करनी है तो मूविंग करने के लिए आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स आपके लिए बहुत ही, उनकी सर्विस बढ़िया है, कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए, 416-524-6524-6704। तो जो लंदन और आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी वाली खबर है कि लंदन में अब आपके लिए खुल चुके हैं, जी हाँ, आपके लिए खुल चुके हैं मास्टर कोलिजन डिपो। तो आपका किसी तरह का भी कोलिजन का काम आपने करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो पे आप जाइएगा, गोर रोड पे मौजूद है। तो आपको बहुत बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, आपकी कार बैंड ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो जी है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको जैसे मैंने कहा कि कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है।
1: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमा $475 पर पाउंड तो शुरू ने, बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तो आते इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 ऑफर सेल कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स ऑन 10 लोकेशंस तो सर्व करते ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135-416-213-1165।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है टोरंटो आसपास के इलाके में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हो। आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू, तो थैंक्सगिविंग आने वाला है अभी, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आप के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है और टीवी बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, किचन की गैजेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी गोल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपको मूव करना है तो एचके मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपको मदद करते हैं कनाडा भर में मूव करने में। तो एचके मूवर्स का नंबर आप लिख लीजिए, 416-524-7046-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट ले गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਦੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-4840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत और सुनाते हैं। तो अगर आप को किसी किस्म की भी आपने गाड़ी की आपने कोलिजन का काम करवाना है तो आपके लिए आई लव आपके लिए हैमिल्टन में, आपके लिए लंदन में, मैं कह रही हूँ हैमिल्टन में, लंदन में आपके लिए अब मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुके हैं। तो वहां पे आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे। गोर रोड पे मौजूद है लंदन में। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए।

स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको अपने कलीजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलीजन जीपू लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। masterkalijanjipu.com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हो। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो पूरा वीक है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज कल बच्चे स्कूल वापस चले गए हैं, तो जहाँ पे भी बस उनकी रुकती है बच्चों को उतारने के लिए या उनको पिक करने के लिए, तो आप जरूर स्टॉप करिएगा उसके लिए। बच्चों के आपकी सुरक्षा के लिए भी, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी। और अभी वीकेंड है, मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, 18, 19 और 20 सितंबर के लिए 3 दिन का है। तो जहाँ पे जो स्टैनले रोड पे कन्वेंशन सेंटर है, तो स्कोशिया कन्वेंशन सेंटर, वहीं पे ये म्यूजिक फेस्टिवल नियाग्रा फॉल में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। कल रात को मैंने देखा और आज शाम को भी बहुत सारे लोग नियाग्रा फॉल में आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप भी जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों मित्रों को भी एंजॉय करवाइएगा। तो मैं आपको भूले बिसरे कोशिश करती हूँ कि जो गाने इतने ज्यादा प्ले नहीं किए जाते हैं, भूले बिसरे से हो गए हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको ऐसे ही गीत सुनाऊं ताकि आपको थोड़ा मजा आए और मुझे भी सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए, ठीक है ना। तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला, हैव ए वंडरफुल वीक एंड ए सेफ वन। और आप जरूर अपना किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, रन कीजिए। और कल 20 सितंबर को आपके लिए जो है टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल उसमें जाती हूँ, 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो राम मंदिर वाले गणेश विसर्जन बोट क्रूज भी है उनका, तो मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं जो हर साल करती हूँ टेरी फॉक्स रन के लिए जाती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी 5 किलोमीटर। सो ऑल द बेस्ट। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबदा भला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: Salanga.
1: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-6862.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se Anu call karo. Phir to Anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikkiyan nikkiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: Imagine करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हमें कॉन्टेक्ट करो 647-400-6800 647-400-6862
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: Power of sale notice? Bank walo paise di mang? Unhe hi sanu call karo. फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग कर्जा माफ कराओ 100% मानसिक शांति पाओ कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100 कर्जे तो परेशान असी करांगे काम आसान 416-502-3100

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008812 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलबा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजन महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंकोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं थोड़ा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी अगले घंटे में थोड़े ढेर सारे डॉलर बचाइए, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस हो चाहे ग्रैंड फर्नीचर हो। सुल्तान जी स्टूडियो साडे नाल हाजिर ने। जनाब वेलकम टू द शो सर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: क्या हाल चाल ने?
1: बिल्कुल ठीक, उपर वाले दा शुक्र।
0: उपर वाले दा दुआ करना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप फ्रिज स्टोव वेचते हैं, लॉन्ड्री सैट वेचते हैं, छोटे वड्डा समान वेचते हैं, जिहड़ी स्क्रीन हुंदी है जी ते टीवी देखते हैं वह वेचते हैं
1: जी,
0: लेकिन रेगुलर टीवी भी वेचते हैं,
1: बिल्कुल
0: लॉन्ड्री भी वेचते हैं
1: जी।
0: छोटे तो छोटा जो टेलीविजन ऑफिस चलाना होंगे
1: जी,
0: वो किन्ने कदम मिल जाता जी?
1: इस टाइम जे राइट नाउ आप गल करिए जी, फिर 55 इंच इस टाइम स्टॉक च है,
0: ठीक है,
1: 50 और 40 इंच जेडे सोल्ड आउट है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी, ते जे कोई लेना चाहते कस्टमर ते मैं डेफिनेटली उन्होंने 55 इंच 399 च दे दूं।
0: साहब जी 55 इंच 399
1: दा ऑफिस च लाओ, नाले बिग स्क्रीन है, नाले 399 ओनली।
0: लो जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस वालों ऐलान कर दिता गया 55 इंच दा ब्रांड न्यू डब्बे च बंद टेलीविजन सिर्फ 399 दा।
1: ते जे कोई 65 इंच लेना चाहुंदे आ,
0: हां जी,
1: $100 होर पौन, किन्ने बने $100 पा?
0: 499 65 इंच टेलीविजन 499 दा ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते।
1: और ये सारे ब्रांड न्यू फैक्ट्री सील्ड डब्बे च बंद मिलनगे गूगल फीचर्स दे नाल है। गूगल मीन्स के दे च तुहानू ऐप स्टोर मिलेगा, अनलिमिटेड ऐप्स तुसी डाउनलोड कर सकते हो, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, 1 year पार्ट्स एंड लेबर वारंटी इंक्लूड इन द प्राइस। 55 इंच 399 ते 65 इंच 499।
0: वाह क्या बात। अच्छा 75 इंच, चलो
1: बिल्कुल 65 तो उपर 75 है। 75 वैसे जेड़ा ना जी टैरिफ लगी प्राइस है 1099 पर, साडे कोल 3 या 4 टीवी इन स्टॉक है सिर्फ
0: 799
1: च मिलेगा।
0: 75 इंच
1: सैमसंग दा,
0: ठीक है।
1: दे जे 85 इंच लेना जी,
0: हां जी,
1: ते साडे कोल 85 इंच 1399 सिर्फ 1399।
0: इस सारा जो सारा जो समान है टैरिफ तो पहला वाला समान तुहानू दिता जा रहा है, लै लो जाके टैरिफ दे बाद वाले जो समान ऑर्डर आने हैं जिहड़े इन्होंने ऑर्डर किए हुए उदो जी प्राइस वजनी है।
1: टैरिफ लगी प्राइस ए $1800 है जी।
0: अच्छा
1: 85 इंच कोई भी लैन गए 1799 या कोई सेल लगी भी 1699 तो घट नहीं मिलना,
0: ठीक है।
1: पर 1399 का ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से कुछ एक टीवी इन स्टॉक है, पिकअप करना है पिकअप कर लो तद भी 6 महीने ची पे करना है, डिलीवर कराना डिलीवर करा लो तद भी 6 महीने ची पे करना है। 905-450-2828 नंबर है, तो फिर बिग स्क्रीन जो 85 की गल करते हैं तो वह आ जाता 98 इंच।
0: अच्छा जी,
1: एदी भी टैरिफ लगी प्राइस $2600 है, पर 1999 दा ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते ए कोई 5-4 टीवी नहीं, सिर्फ 2 टीवी स्टॉक,
0: ठीक है।
1: 2 लकी कस्टमर कैन गेट इट 98 इंच सैमसंग ओनली 1999। पहुंचना किथे है तुसी? 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन अपलायंसेस .com साडी वैबसाइट है। 905-450-2828 नंबर है। ते मैं गल्लां करदे करदे हुणी मैसेज कीता सी जी अपने स्टोर ते,
0: जी जी
1: 40 इंच भी 3 पए है।
0: अच्छा
1: 199 च 40 इंच ले लो,
0: 40 इंच 199 च 40 इंच टीवी जी 199।
1: यस
0: $199 च 40 इंच दा मिल रहा है ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 199 ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।

0: फर्स्ट और सेकंड मॉर्गेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हूँ।
1: तब फिक्र क्यों कर दे, नीलम सिडोवकुल हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
0: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
1: इना कॉल नहीं ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
0: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
1: आज ही कॉल करो नीलम सिडोव नो
0: 647-739-8710।
2: मैं क्या किथे जा रही है?
3: 10 वारी क्या पिछो हाक ना मारिया करो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी चली सी।
2: ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी हूँ 60,000 स्क्वेयर फीट ते मूव हो गया।
4: 100 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन, हर तरह की ग्रोसरी ले पहुंचो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 416-700-9100।
5: प्रकार दे शीशे अते विंडो आदले रीति ग्लास एंड विंडो, टेबल टॉप्स, फर्नीचर ग्लास, बार आदले कस्टम डिजाइनिंग भी अवेलेबल है। रीति ग्लास हुण वाशरूम दे शावर नूं शीशे दी दीवार अते डोर्स नाल बहुत ही खूबसूरत बना दिंदे हन। तुसीं इन्हां दा शोरूम जरूर चेक करो। रीति ग्लास एंड विंडो 905-790-8335-790-8335 और विजिट www.reetiglass.com।
6: हर महीने मैकेनिक नूं पैसे दे दिंदे हो, ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नूं गोद ले लिया।
7: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक तो रोज नखरे करता है।
6: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
8: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
6: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
8: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसीसागा। कॉल 647-581-9999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुण मैं की करा।
9: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
10: आ पैने खरीद लिया गहने
11: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नी मिलिया चंगा सोना।
10: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा है, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
11: गल ता तेरी सही है पैन, किथों मिलनगे गहनियां दे सोने डिजाइन।
12: जनक ज्वेलर्स, जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच थानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलनगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 905-230-8800।
13: विशन वैनिटीज से न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज से सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्पेशल प्राइसेस। नहीं, वैनिटीज दी परचेज से सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विशन वैनिटीज, डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 905-671-1800, 905-671-1800।
1: कंडीशंस अप्लाई।
14: बाबा जी मैं बहुत तंग आ, की करा, मेरा घर वाला रोज शराब पी के आंदा घर, इन्ना कलेश हुंदा, इन्ना कलेश हुंदा, मेनू दसो मैं केड़ा वर्त करा।
15: बेबी है तो औखा।
14: हां जी,
15: पर जे तू रख लए ता घरे लड़ाई नहीं होगी।
14: मैं कुछ नहीं करन नु तैयार हां, तुसी बस दसो मैं केड़ा वर्त रखा।
15: मौन वर्त।
16: फट्टे मु तेरे।
17: इंडियन फ्रूट लैंड ते सुपर डुपर सेल लगा दी है। शेर देसी स्टाइल आटा 10 pound 6.99 दा, स्वर्णा चक्की आटा 20 pound 10.99 दा, मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर दी वड्डी बॉटल 19.99 दी, 2% दुध 4 लीटर 4.99, हल्दीराम दे 2 स्नैक चको 3.99 दे, ब्राड वेजी बर्गर 4.99, बाल्टी जो गोडलो 5 किलो 8.99, टाटा टी 1 किलो 9.99 दी। ओनली हाईवे 10 ते सैंडलवुड वाली लोकेशन ते हुंदा है। सेविंग दा दूसरा नाम इंडियन फ्रूट लैंड।
18: And gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

0: Atma News Desk. Locally covered, nationally connected.
1: Afternoon, welcome to Dave Tarla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई
0: हाँ
1: तू एवे कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ मैनेज करना केड़ी केड़ी चीज होनी चाहिए है बच्चा केड़ी केड़ी चीज जी फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप के दौरान यह सारिया चीजा ऑर्गेनाइज कर दे तू बन जा
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए है बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया चंगा लगा नी
1: हेलो
0: मौके की गल है जे अगले मेरे को काम कराने कल नू भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले का जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देने फिर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दीआं गल्लां
2: मेरे रब जी मेरा बिजनेस नहीं चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तातले नू कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: यार मैनू एक गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ दी?
1: ओ यार पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी ही ने रिंगटोन ते नची जाना।

0: ਹੱਡ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
2: ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
3: study visa express entry canadian express entry spousal file parents pr super visa nanny work permit farmer investor ya self employed di file gal ki immigration di har problem da solution lan layi community de jane pehchane ate tajrubekar immigration consultant gary virk nu milo
4: koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya hove immigration da koi bhi masla hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha cic immigration hune hi call karo 416-456-6
5: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
6: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
7: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381
5: ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट